0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने दुरूस में बयान कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में हमने इख्तसारन जजीरा अरब के अहवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल आपके बारे में मुबशरात, इरहासात, फिर जमाने विलादत, फिर वक्ते विलादत और उसके बाद जमाने रजात, और जमाने रजात के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का

नहीं मान ले आया कि जी मैं तो मानता हूं, एक पानी का गोता लगा। लेकिन अबू जहल इतना इतना शदीद है, इतना जालिम है कि गर्दन कटी हुई है, आखिरी रगे हैं, फिर भी कुफर से बाज नहीं आया और इस्लाम के मुखालफत करने से बाज नहीं आया। अब देखें कि उसने जुल्म और सितम की जो तरीका ईजाद किया है, आज पूरी तारीख आप उठा के देख लें, आज की तारीख में आप भी समझ नहीं सकेंगे कि अबी जहल से पहले भी किसी जालिम ने ऐसे सोचा होगा। बाद में तो लोगों ने बहुत सोचा, क्या कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, क्या कुछ नहीं हुआ कोसुफू में, क्या कुछ नहीं हुआ सर्बिया में, क्या कुछ नहीं हुआ शीशान में मुसलमान बेटियों के साथ, खवातीन के साथ। अबू जहल ने दो ऊंट मंगवाए और ऊंटों को रस्से बांधे गए और रस्से बीबी सुमैया के पांव में बांधे गए, एक इस पांव में रस्सा बांधा गया, एक इस पांव में रस्सा बांधा। कभी आपका अकल सोच सकता है तहजीब का ये तरीका? और मुखालिफ सिमत में ऊंटों को खड़ा किया गया और उस जालिम ने कहा कि जब मैं हुक्म दूं तो दोनों ऊंटों को भगा दिया जाए, तो एक ऊंट इधर दौड़ेगा, एक ऊंट इधर दौड़ेगा। अबू जहल सामने खड़ा है, जब ऊंटों को दौड़ाया तो खुद नेजा मारा बीबी समैया की शर्मगाह में और बीबी साहबा दो हिस्सों में चीर दी गई। ऑपरेशन नहीं, छुरी से नहीं काटा गया, तलवार से नहीं काटा गया, ऊंटों ने ताकत से चीर, जैसे मुर्गी को पकड़ के आप यूं चीर। लेकिन उस वक्त भी उसकी जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है जो इस्लाम के रस्ते में शहीद। यानी तहजीब की कोई हद है? हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन बैठे थे, सहाबा ने कहा कि हजरत खब्बाब हमें अपने इब्तदाए इस्लाम की भी कोई बात सुना। हजरत खब्बाब इब्न अरत ने बताया क्या किया, आपने फरफा सौबहु अन ज़हरिही, आपने अपनी पुश्त से कपड़ा उठा लिया। कहा मुझसे क्या पूछते हो, मेरी पुश्त देख लो, मेरी पुश्त पे पूरी इब्तदा इस्लाम की तारीख लिखी हुई है। सहाबा कहते हैं जब हमने आपकी पुश्त को देखा तो उसमें ऐसे गड़े पड़ चुके थे, ऐसे गड़े पड़ चुके थे ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे जैसे गड़े होते हैं और पूरे अंदर तक गड़े पड़े हुए और सियाह। हत्ता के हजरत उमर जैसा आदमी, हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर जैसे आदमी कहते हैं कि मुझसे सबर न हो सका, मैं रो पड़ा और वल्लाही मारा है तो खुदा की कसम ऐसी पुश्त इसी इंसान की मैंने नहीं देखी थी। मैंने कहा खब्बाब ये क्या है? उसने कहा इस्लाम के लिए जब हम अल्लाह का नाम लेते थे तो जालिम कुफार जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंगारे अंगारे बनाए, अंगारे बनाकर, और अंगारे पता है कैसे बनाए गए हैं? लकड़ी के अंगारे नहीं, उन्हें पत्थर लेके आग में रखे, पत्थरों को आग में रखा और पत्थर जब आग की शिद्दत से सुर्ख हो गए, अंगारा बन गए पत्थर। जब अंगारा बन गए तो मेरे कपड़े उतार के मेरी टांगों से पकड़कर मुझे उन पत्थरों पे खींचा, और जब मुझे खींचा जाता था तो जहां जहां पत्थर जलता था जला के अंदर गड़े पड़ जाते थे और अंदर से जो मेरी पीप बहती थी उसी से वो अंगारे बुझते थे, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होता था। और एक दिन आबना के लाल सरकारे दो आलम रहमते दो जहां सैयद मोहम्मद अरबी पिदा हुआ अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काबा शरीफ के पास बैठे हैं कि यही खब्बाब को मौका मिला हजूर के करीब, वरना तो काबे में कौन आ सकता। करीब आने के बाद कहने लगे अला तदउ लना या रसूल अल्लाह, अला तस्तंसिर लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप कुछ ना करें, अल्लाह से तो दुआ मांगे हमारे, अल्लाह से तो मदद मांगे कि अल्लाह पाक हमारी नुसरत फरमाए, हम कब तक ये अदाब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हजूर ने फरमाया कि खब्बाब क्या कह रहे हो, हमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि अल्लाह के दीन के लिए जिनके सरों पे आरा रखा गया, आरा रख के चलाया गया, जैसे लकड़ी को दो हिस्से किया जाता है, वो दो टुकड़े हो गए लेकिन उन्होंने उफ नहीं की, तुम अभी से घबरा गए। आपने फरमाया खब्बाब क्या कह रहे हैं, एक एक दिन में सात सात अंबिया को कत्ल किया गया, एक एक दिन में अल्लाह के, अल्लाह का नाम लेने वाले जो है उनके सरों पर आरे रख के चला दिए गए, एक एक दिन में अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम को फांसियों पे लटकाया गया, अल्लाह के नाम लेने वालों को नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला ऐसा होता था कि उनके चमड़े उतारे जाते थे। आप जरा अपने हिंद की तारीख उठा के पढ़ें,
کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500-500 دین والوں کو پھانسی دی گئی. اور علماء عام مسلمان بھی نہیں, علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا, یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں, ایک وقت آئے, ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب. اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی, اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں, یہ تہذیب کا یہ عالم ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आए। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आए। कि बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकलीन में हैं, हमेशा दर्द सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। बस हम कहा ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी। तो बाकी ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम अज कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां भी तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं। तो क्या है? मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे नहीं, गाना बंद। जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस छोड़ के चादर एक डाल के जहां वाले साहब तकलीफ फरमा रहे थे वहां आई और तब सारा मजमा लौट आया, क्योंकि वो गाना वाना तो बंद हो गया। तो वहां आके उसने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पीछे बैठ के कुरान सुन सकती हूं। उन्होंने कहा कि हां सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जब पढ़ा जाए आदमी कितना खराब क्यों ना हो, आखिर इंसान है। ये अल्लाह के कुरान की तासीर है कि मकनातीसुन लिलकुलूब। अल्लाह ने जैसे काबे को बनाया है ना दिलों का मकनातीस, इसी तरह कुरान दिलों को बदलने वाला। शर्त ये है कि जरा आप कुरान को मोहब्बत से और इखलास से पढ़ें, एक रस्म समझ के ना पढ़ें। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं उनमें कुरान मौजूद, और इतनी में पढ़ रहा एक अजाब में पढ़ रहा था कि हॉलैंड के एक इलाके में जब राबता आलम इस्लामी का एक वफद पहुंचा तो वहां पर जब गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक मस्जिद है, और मस्जिद में गए और फिर उन्होंने अपने इमाम मस्जिद से तारुफ कराया कि जनाब ये हमारा इमाम। ठीक, बातचीत होती रही। अब इस असना में जुहर की नमाज का वक्त आ गया तो राबता के वफद वालों ने कहा कि भी चूंकि यहां का इमाम मस्जिद मौजूद है तो आप सिर्फ ये ना समझें कि चलो भाई हम मक्का शरीफ से आए हैं लिहाजा हम नमाज पढ़ाए, नहीं, इमाम मस्जिद जो है वो हक है लिहाजा वो नमाज पढ़ाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी दो रकात पढ़े तो इसलिए बेहतर है कि मकामी इमाम नमाज पढ़ाए। तो उन्होंने फरमाया कि जब उस इमाम साहब ने नमाज पढ़नी शुरू की तो अब जनाब अल्लाह अकबर करके सुभानक अल्लाहुम्मा भी जोर से पढ़ रहा है, और उसके बाद सूरत फातिहा भी दुहर की नमाज में, और उसके बाद कुल अल्लाह वाद भी जोर से, फिर रकू में सुभान रब्बिल अजीम भी जोर जोर से, समय अल्लाह और जोर से, इसी तरह और दो रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया। हमने कहा खुदा के बंदे तुमने दो रकातें कैसे पढ़ाई। उसने कहा हम तो बात यह है कि एक दफा मैं गया था फला जगह तो वहां अरबों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था तो उन्होंने जोहर में दो रकातें पढ़ी थी, हालांकि वो जुमा का दिन था, शरीफ आदमी ने जुमा पढ़ा था ना, जुमा और जोहर में फर्क नहीं कर सका। और आप भी तो कह रहे थे कि हमने दो पढ़नी है, तो मैंने कहा फिर आपने जब दो पढ़नी है मैं भी आपको दो पढ़ा दू। तो जब हमने कुरान को यूं समझा हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद फिर हम बल्कीक के एक शहर में गए तो उनसे जब हमने पूछा कि भाई आपका जुमा कैसे पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा जी हम ज्यादा झगड़े में नहीं पढ़ते, हम तो महीने का फर्स्ट संडे जो आता है उसी दिन जुमा पढ़ लेते, हर महीने में एक जुमा पढ़ते, और वो भी कब पढ़ते हैं जब पहला संडे होता है, ताकि ना डेट तब्दील होती है ना लोगों को आने में तकलीफ होती है ना वक्त तब्दील होता है, उसमें एक महीने में हम एक दफा जुमा पढ़ लेते हैं। اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس، تو ہم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا ایک دم. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا

उन्होंने जब देखा तो आप हजरत कुमार इतनी देर में लिबास तो बदल नहीं सकते थे, लिबास तो वही था, वही आपने जो जंग के लिए तैयारी की हुई थी, बाकायदा हथियार सजाए हुए हैं और जनाब कमान पीछे लटक रही है और तीरों की थैलियां लटक रही हैं और तलवार एक लटक रही है और एक हाथ में है और जनाब उसी आलम में है। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, उमर दरवाजे पे आया है लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती, क्यों? अगर वो मिलने के लिए आता या अच्छी नीयत के साथ आता तो कभी फिर तलवारें उठा के तो ना आता। जो आदमी मिलने के लिए आता है वो तलवारें लेकर तो नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु असदुल्लाह व असद रसूल, अम्म रसूलुल्लाह, मेरे मदनी के चचा हैं जिनका लकब है अल्लाह के शेर, अल्लाह के रसूल के शेर। हजरत हमजा ऐन शबाब है, बचपन है, अभी अभी गोया यूं समझे ना जैसे हम कहते हैं ना मसें भीग रही हैं, अभी अभी बाल निकल रहे हैं। हजरत हमजा ने कहा क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, खोल दो दरवाजा, आने दो उमर को। अगर उमर की नीयत ठीक है, अगर उमर किसी सही इरादे से आया है तो हम अपनी आंखें बिछाने के लिए तैयार हैं, और अगर उमर की नीयत खराब है और उसने मेरे मदनी सरकार को तकलीफ देने की कोई बात सोची है तो खुदा की कसम है तुम गवाह हो जाओ कि तलवार भी उमर की होगी और गर्दन भी उमर की। कोई अकेला मक्के में उमर बहादुर पैदा हुआ? खोल दो दरवाजा, आने दो उमर को, देखते हैं क्या कर। दरवाजा खोला, उमर तो पहले बैठ चुके थे, नजरें झुकी हुई हैं, हजूर के सामने आए। एक रिवायत में आता है फजबहु बिथौबिही, हजूर पाक ने कपड़े से पकड़ के झटका दिया, फरमाया अमल अलम, अभी तक वो वक्त नहीं आया उमर, माना वक्त इस्लाम का या उमर, क्या अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम एक खुदा की तौहीद को समझो, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम बुतों की इबादत से बाहर निकलो, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम मोहम्मद मदनी की रिसालत का इकरार करो, उमर क्या है? अभी हजूर कह रहे हैं, उन्होंने कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह फकब्बर रसूलुल्लाह फकब्बर असहाबहु। जब हजरत उमर ने कहा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हुजूर इतनी खुश हो गए, अल्लाहू अकबर, सब सहाबा ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद, तकबीर की धूम हो गई, हजरत उमर मुसलमान हो गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। और उसके बाद बैठे हैं, एक सहाबी ने कहा उमर तुम तो तलवारें उठा के कत्ल के इरादे से निकले थे लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि रात तेरे लिए मोहम्मद अरबी अल्लाह के काबे में बैठ के दुआएं कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा अइज़ल इस्लाम बिअहदिल अमरैन, कि मेरा अल्लाह इन दो में से एक को मुसलमान कर दे, या उमर को मुसलमान कर दे या अमर इब्ने हिशाम को मुसलमान कर दे, मोहम्मद अरबी तो तेरे लिए दुआएं कर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम से इतनी खुशी हुई सहाबा को, इतनी खुशी हुई सहाबा को कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं, और बल्कि एक रिवायत में है कि जिब्रील, और उन्होंने आगे कहा कि या मोहम्मद आज तो आसमानों पर अल्लाह के फरिश्ते भी खुशी कर कि असलमा उमर, उमर मुसलमान हो। वो जब्बार जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जो सबसे बड़ा मुखालिफ था, जो सबसे बड़ा मुहारिज था, आज वो भी इस्लाम ले आया। तो कुछ देर गुजर गई तो उसके बाद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं एक बात कहता हूं। उन्होंने फरमाया कहो उमर, क्या बात? उन्होंने कहा हजूर अलसना अलल हक व हुम अलल बातिल, उमर है ना जी, अब करिए जमान है, ये तो उमर है ना जिसे तारीख मानती है, दुनिया मानती है, तारीख इंसानियत में ऐसे लोग बड़े कम पैदा हुए, इतने बड़े जीनियस। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलसना अलल हक व हुम अलल बातिल, क्या ये बात ठीक नहीं कि हम हक पर हैं और मक्के के मुशरिकीन जो है वो बातिल पे हैं? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या बात हुई कि युबदुल्लात वल्लुज्जा, कि लात उज्जा जैसे झूठे खुदाओं की इबादत तो खुल के की जाए मक्के में,

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुक मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे, यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है। और उन्होंने कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, काना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बदो अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबल हाजा व कुंतु नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके कह कहती है हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती हूं। जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने। कौम आ गई गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबू किम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कान रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद कुछ तुम गुजार थे, तो उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी मां अच्छी, ये क्या फा अशारत

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन दंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव मुबारक खून से भर गए। उसी आलम में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सरजमीन हरम मक्का मुकर्रमा को लौटे तो आपके लिए ये दिन जो थे बड़े शदीद हुमूम और गुमूम के दिन थे। एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह परेशानियों का और दुखों का आलम था, आमुल हुज़्न था। मुआविनीन वफात कर गए, मुसाहिदीन के पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और अल्लाह के नबी अल्लाह की दावत के लिए हर वक्त बेचैन हैं। अल्लाह की कुदरत अपने फैसले फरमा रही थी कि अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अपने नबी के लिए इसरा और मेराज, ताकि एक तो हुजूर की शान में और ज्यादा बुलंदी हो, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हासिल हो और आपके गमों का बदावा हो और पूरे आलम पर ये चीजें जो हैं जब आश्कारा होंगी तो फिर उन्हें शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। और साथ एक गुना तसल्ली थी कि मेरा बदनी सिर्फ मक्का और ताइफ से आप घबरा रहे हैं कि ये आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो पूरी दुनिया को, आसमानों को भी आपके मुसख़र करने वाले हैं, ये तो छोटे से शहर है। तो अल्लाह की तकदीर ने आपके इसरा और मेराज का फैसला। अब ये बात याद रखें कि आमतौर पर हमारे यहाँ इंडो पाक में लफ्ज़ मेराज ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर मुबारक जो है इसके दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो इसरा है और एक हिस्सा मुबारक जो है वो मेराज है। इसरा का माना होता है सैर, और खास तौर पर वो सैर जो रात के किसी हिस्से में की जाए उसको कहते हैं इसरा। क्योंकि अरब में मुहावरात, अरब में कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो किसी खास वक्त के साथ ताल्लुक रखते हैं, वरना सैर का लफ्ज तो सैर है, लेकिन जब अरबी में इसरा का लफ्ज सैर के माने में, माना यह होता है कि रात की तारीकी में या रात के किसी हिस्से में जो सफर किया जाए उस पर सैर का इतलाक। इसी तरह पूरे कुरान मुकद्दस में आप नजर डालेंगे तो जहां जहां आपको लफ्ज इसरा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं असरा

अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर अब्दना अय्यूब, सारे कुरान में वो कहते हैं खोल के देखो, सारे कुरान पाक का मुताला कर लें कि जहां जहां लफ्ज अब्द आए, इबादना इब्राहिम व इसहाक, अब्दना अय्यूब, और इसी तरह इबाद

0: हमारी क्यादत कभी भी ऐसे बयान को कबूल नहीं करती। कौन बयान ये दे रहा है हमारी तरफ से, कौन लगा रहा है, मुझे बंदा बताए, हम ऐसे नोटिस लेंगे, वो कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता पाकिस्तान अम्बेसी के खिलाफ जो हमारी पार्टी का बंदा, वो कोई ऐसे नहीं हो सकता।
1: चलें बेग साहब, आपका वाजा मौक़ हो गया, चूंकि आप ही हेड हैं हर चीज़ के, तो आपने अपना बयान दे दिया, तो बाकी खबर तो खुद फेक आपने कहा, तो फेक खबरें इसी तरह बैठ जाती हैं, जिस तरह चलती हैं इसी तरह बैठ जाती हैं।
0: अम्बेसी हमारे जो देखे ना, हमारी क़यादत कभी भी अम्बेसी के खिलाफ हमें कोई भी हमारा बंदा बोलेगा काफ लीग का, तो वो नहीं बोलने देंगे, क्योंकि अम्बेसी तो उन्होंने खुद लगाए हैं बंदे, तो हम ही उनको बोलेंगे ये बंदे अच्छे नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मुझे मेरे नोटिस में होगा तो मैं जरूर नोटिस लूंगा और मैं अपनी क़यादत को भी बोलूंगा, उसका कोई काम नहीं है पार्टी के अंदर जो बंदा अपनी मर्जी से अम्बेसी के खिलाफ बोलेगा। कौन सा अम्बेसी ने हमारे साथ जुर्म किया है या ऐसा काम किया है कि हम अल्लाह माफ करके उनके खिलाफ चलेंगे, नहीं चलेंगे।
1: बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया,
0: बड़ी मेहरबानी।
1: सवान नाजरीन, ये थे मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब जो कि पंजाब के नायब सदर हैं, और इन्होंने यहाँ पार्टी को मनज़म किया और उन्होंने फुल जो है बड़े ज़ोर से तरतीद की, वो कानूनी हक भी अपना वो रखते हैं कि उनकी पार्टी का नाम इस्तेमाल किया गया। कोई बात कहना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको अब बात कर देता हूँ, ओपन हमारी बात हो रही थी कमोनिटी पे। मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें भी पता है, मुझे पता है कि 2 या 3 साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी, क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना, इसकी मिस्ट्री तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी, क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये मार्चन लेकर खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, उसने इसको ली है। कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है, की मीटिंग जुमे को तो काम ही करते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है और आपका उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूओ में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती है। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
1: अच्छा साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
2: ये अदनान, आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे। क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपने रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है, आपका जो हल्का है, मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ, या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके सिंह के फलकेली उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने कहा और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमेरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं है मैं, तो वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाई स्टार्ट का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथी उनको नेशनलिटी मिली थी तो उनकी नेशनलिटी, बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने, हाई स्टार्ट ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सब सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने राब्ते, ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से राब्ते करूंगा, और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा, कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम 1 साल पहले होता तो तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते हैं, कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे सेंटर हो, हमने ये आपकी आवाज से सुना वो सुना है, मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वो रोक लेते हैं लोग। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि लोगों की इतनी इज्जत हो गई है आप लोगों की वजह से, और ये तो आप लोगों का कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है, और कि लोग मुझे अब सुनते हैं, मुझे गाय पूछते हैं, मुझे कहते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस, मैंने कहा था कि मैं तो मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे,
1: नहीं,
0: मैं तो ये
1: मेहरबानी
0: सारा
1: आपकी,
0: आपको
1: आप टाइम
0: देखिए
1: निकालते हैं, टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: राजा साहब ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी, और मैं इसका शुक्रिया अदा आपका कभी बोलूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही, हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी से भांजा है, मेरी बेटी है, वो जहां जाते हैं वहां वो यंग से पूछते हैं, तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है, आप लोग, मैं पीछे हट जाता हूँ आप लोग आगे आ जाएं, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलना है, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन, हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि

0: कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर दो ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है, और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है। इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, कुछ
1: जी
0: देख पा रहा
1: यही
0: हूँ।
1: यही यही अग्रहण, यही मैं आपको रुकूंगा। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे पुलिस सेल्स के बल निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैं यही चाहता हूं कि आप आवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ़ुज़ मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये रास्ता है राजा साहब। देखिए, वो जो जो दो दो दो अलग चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जो थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना, वो ये था कि जब आप कि कोई बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये, अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे, आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मुकाम उन्होंने छीनने की कोशिश की होगी, चाह साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो
1: जी जी
0: आप ये क्या कहते हैं, क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं, ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे 10 कॉल के पीछे के लिंक आने लग जाते हैं, और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटीग्रेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को, और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है ललित गुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो
2: चले,
0: जो
2: ये
0: जो
2: आने
0: इस
2: वाला वक्त
0: वक्त
2: बताएगा। तो शाह साहब, इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
1: जी दान, बहुत बहुत खुशी हुई है, और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून का जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और जीशान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं, और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं, और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि आप, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली, अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
0: शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों का, फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह
2: अल्लाह
1: हाफिज।
2: हाफिज। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप शाम के प्रोग्राम में दोबारा इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाज़त लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा।
1: जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
2: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो हैं वो سوال و جوابات کی محفل میں وہ اس کو لے رہے تھے، عدنان کو لے رہے تھے، سمجھنا ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔
3: سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا آپ کی آواز کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کے ساتھ براہ راست حاضر ہے۔ سامعین ناظرین، موسم بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، سیاسی موسم جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، اس کے بھی جو دھوپ نکلی تھی سیاسی دھوپ نکل چکی ہے، اب الیکشن مکمل ہو چکے ہیں، وزراء بن چکے ہیں، اب جب چھٹیوں پہ جائیں گے، چھٹیوں کے بعد ہی کہیں آ کر جو ستمبر اکتوبر میں یہ ساری باتیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ سابقہ پارلیمنٹیرین سے جو ہے ایکٹیوسٹ بھی ہے اور تجزیہ نگار بھی ہیں، وہ بہت سارے جو ہیں انالائز بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، اور موجودہ کوپن ہیگن میں سٹی کونسلر بھی ہیں، تو کیوں نہ ان سے جانا جائے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم سکندر۔
2: جی سر، السلام علیکم۔
1: سکندر، میں نے چھوٹی سی تمید باندھی ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے بیانات آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، اخبارات پہ بھی آپ کالم لکھتے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، نئی حکومت بن گئی، آپ کیا کہیں گے؟
2: دیکھیں، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ابھی حکومت بننے سے کوئی ہفتہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میری قومی اخبار میں ایک کالم میں نے لکھا تھا، جس کے اوپر میں نے کوپن ہیگن پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر میں بولتا رہا کہ جو اس وقت ایک مسلمان عورتوں پہ اور مسلمان اور مینورٹیز کے گھروں میں جو سیاست دانوں کا فوکس ہے کہ عورتیں کس طرح کے کپڑے پہنیں، سوئمنگ کس طرح کریں، ہاتھ وہ دیں، یہ ساری جو یہ جو قانون بنا رہے ہیں، اس پہ میں نے وہاں باقاعدہ جو ہے پارلیمنٹ میں بھی بات کی، میں نے اس کے اوپر بہت بڑا کالم لکھا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو حکومت جو اب بنی ہے، اس پہ جس طرح کہ میں نے آپ کو اپنا تجزیہ دیا تھا کہ پہلے یہ کافی سالوں سے جو قانون ہے فیملی سمفیوئن کے، جو قانون ہے پاسپورٹ کے، جو یہ جتنے بھی قانون ہیں، اس پہ انہوں نے زور دیا ہے۔ اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ گھروں کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے 77 پیج کا جو مینیفیسٹو لکھا ہے، اس میں سب سے پہلی غور کرنے والی بات، جو حیران انگیز بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اب ہم نے جو سوچا تھا کہ ہم ریڈیکل بینستہ ایل چینچو کو انسٹیٹیوشن کو ووٹ دیں گے، اس سے ہمارے حالات میں بہتری آ، بات یہ کر رہا تھا کہ جو 77 پیج کا مینیفیسٹو انہوں نے لکھا ہے، اس میں ایک سنگل ہمارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، ایک بھی قانون کی، پاسپورٹ کی، فیملی سمفیوئن کی، کسی بھی چیز کی ہمارے متعلقہ کوئی ایک بھی، ایک سنگل بھی، یعنی کہ میرے ورڈنگز آپ ذرا نوٹ کریں، ایک سنگل قانون کی بھی نرمی نہیں آئی۔ ہمارے بارے میں بہت تھوڑا لکھا ہوا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ اس پہ جو میجر دو چیزیں ہیں اس پہ میں یہ بتاؤں گا کہ ایک، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک کمیشن بٹھایا جائے، وہ بھی فارم جو ہے انہوں نے اب تیار کرنی ہے، جس میں آپ یہ لوگوں کو جلد سے جلد ڈپورٹ کس طرح کیا جائے، کیسے کیا جائے، ود ان دا فریم آف دا کنونشنز، ان کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے لوگوں کو چھوٹی سی سزا پہ نکالا جائے۔ یہ اب اس کو جو بنے ہیں انٹیگریشن منسٹر، انہوں نے اور سارے منسٹر جو ہے وہ ذرا میرے خیال سے ذرا چھٹی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً جو انٹیگریشن منسٹر ہے اس کو بیان بازی پہ لگا دیا۔ ایک تو یہ بات ہو کہ اس پہ تفصیل ابھی آگے بات کریں گے۔ دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ایک فوکس ہے ان کا، وہ ویسے تو یہ نیوٹرل بتا رہے ہیں، لیکن جب یہ سیاسی کام اپنا شروع کریں گے تب یہ فوکس ہوگا صرف مسلمانوں پہ ہی، یہ بھی میری آج بات لکھ لیں۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک مین مینیفیسٹو میں انہوں نے یہ ہمارے حوالے سے ڈالا ہے کہ جو نیگیٹو سوشل کنٹرول ہے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کو، بچیوں کو، کہاں وہ شادی کریں، کہاں وہ کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، فیسٹو میں جائیں نہ جائیں، سوئمنگ پہ جائیں نہ جائیں، کیسے جائیں، یہ جتنے بھی جس کو یہ نیگیٹو سوشل کنٹرول کہتے ہیں، یہ انہوں نے اپنا ایک مین پولیٹیکل جہاں پہ انہوں نے فائٹ کرنی ہے، جو انہوں نے کام کرنا ہے، وہ انہوں نے اس کو اپنے 77 پیج کے مینیفیسٹو میں ہمارے متعلقہ جو چیزیں ہیں جس پہ فوکس ہوگا، وولنگ پولیسیک منوچیز پولیسیک، اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا ہے۔ تو میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے 20 سالوں میں انہوں نے جو گھر کے باہر جو قانون ہے، آپ یہ سمجھ لیں، اس پہ انہوں نے فوکس کیا اور ناطقہ بند کیا ہے، اب یہ گھروں کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو سوشل کنٹرول بالکل غلط ہے، اب اپنے بچوں پہ ناانصافی اور زیادتیاں نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن सवाल ये उठता है कि जब 18 साल से कम बच्चा बच्ची है, अब माँ बाप की कस्टडी है, माँ बाप जो सही समझेंगे उस तरीके की वो तालीम देंगे। हाँ यकीनन वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप जो अपने बच्चों के लिए सही समझते हैं आप वही करेंगे। और लेकिन बात ये कानून की नहीं है, बात ये वैल्यूज की है, बात ये तहजीब की है। वो कहते हैं कि नहीं, आप जिस तरह अपने बच्चों को बड़ा करते हैं आप भी अपने बच्चों को इस तरह बड़ा करें, जबकि जमहूरियत में ऐसी बात है ही नहीं। आप कानून के दायरे के अंदर रहते हो, आप अपने बच्चों के लिए जो बेहतर समझते हैं आपको उसकी इजाजत है। और लेकिन ये सियासतदान जो है इसको भी अब टारगेट करेंगे इस चीज को। और मैं उसमें एक मिसाल आपको दूंगा कि अभी कुछ अरसा पहले ना इन्होंने, जिस दिन हमारी पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, तो उस दिन जो नील्स लगाओ ने कंजर्वेटिव का, ये कह रहे थे कि मुसलमान जो है ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल करते हैं अपनी बच्चियों पे। और जिस तरह की अभी स्विमिंग, अगर कुछ औरतें हैं वो बच्चियां औरतें हैं वो कहती हैं कि हम स्विमिंग जो है सिर्फ लेडीज क्लास में हम करना चाहते हैं, इसको उन्होंने अब बंद कर दिया है हुकूमत ने, कम्यून ने मिसाल के तौर पे। या इन्होंने कहा कि जब आपने डांस फेस्ट लेना है तो औरतों ने जरूर हाथ मिलाना है स्किन से स्किन लेने के लिए, या इन्होंने जिस तरह बुरखा बैन किया, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आप कानून जानते हैं। अच्छा अब बात यह कि जिस दिन हमारी डिबेट हुई है कोपेनहेगन पार्लियामेंट में, तो उसके अंदर दिल्स फगाव ने उठ के कहा है कि आप बताएं कि मुसलमानों के अलावा ये कौन करता है जबरी अपने बच्चियों पे। तो बात वही होगी जो मैं हमेशा करता हूं, आगे से कोई बोलने वाला हो तो फिर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहां पे मैंने पार्लियामेंट में उठ के ये कहा, मैंने कहा कि आप मुझे एक बात बताएं, मतलब ये मैं अक्सर पहले भी बात कर चुका हूं कि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये उस सर्वे को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ, कहते हैं कि एक सर्वे आया जिसमें मोर देन 40% जो मुसलमान पेरेंट्स है उनसे ये पूछा गया कि आपकी बेटी अगर किसी एथनिक डैनिश से, नॉन मुस्लिम से शादी करती है, रहना चाहती है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। उस सर्वे में मोर देन 40% जो रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। इस चीज को उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया, उस दिन पार्लियामेंट में भी इशू बनाया। लेकिन ये बात बताना भूल जाते हैं कि यही सर्वे एथनिक डैनिश पेरेंट्स पे भी हुआ है, उसमें यह पूछा गया कि अगर आपकी बेटी एक मुसलमान बॉयफ्रेंड या मुसलमान से शादी करती है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। राजा साहब आप गैस करें वहां पे क्या जवाब हुआ होगा। वहां पे भी यही जवाब था, मोर देन 40% ने कहा हमारी डैनिश एथनिक डैनिश बच्ची अगर किसी मुसलमान से शादी करती है या बॉयफ्रेंड रखती है तो हम उस चीज को नापसंद करेंगे। इस फैक्ट को तो सामने नहीं लाया जाता, फैक्ट उसी को सामने लाया जाता है कि मुसलमान माँ बाप ने या माइनॉरिटीज के माँ बाप ने ये कहा कि 40% ज्यादा ने कहा है कि हम नहीं पसंद करेंगे कि हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी करे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये कहते हैं कि ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल है, तो ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल उतने ही एथनिक डैनिश फैमिलीज में है जितने की मुसलमान फैमिलीज में है। लेकिन जब इनका अब ये पॉलिटिकल एजेंडा, जब ये अब इस मैनिफेस्टो पे जब ये काम करेंगे, तो एक सेकंड, तो उस पे जो है ये फोकस जो है नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है मुसलमानों पे फोकस करेंगे, ये उस पे फोकस नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो अभी नई हुकूमत आई है उसमें हमारे हवाले से जो नरमी आनी चाहिए थी, क्योंकि देखें कि हमने 7% ने इनस लिस्ट को वोट दिया, एल्सैनसुक बामुश्किल अंदर आई, इसी तरह रेडिकल विरिस्ता को वोट दिया। लेकिन हमारा वही बात होगी जो मैंने पहले तजिया किया था कि जब ये मैनिफेस्टो बनेगा तो इसमें आप देखेंगे हमारे मुतल्ले का कोई जो है कानून, कोई नरमी, कोई कुछ नहीं होगी। जी राजा साहब,
1: सिकंदर आपने बताया कि हमारे मुतल्लिक कोई, किसी पार्टी जो हुकूमती जमात में पार्टियां बैठी हैं उसके हमारे मुतल्लिक कोई कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जितने कैंडिडेट आते हैं इलेक्शन में ये इन्हीं पार्टियों में आते हैं हमारे गैर मुल्की बैकग्राउंड के।
2: जी राजा साहब मुझे समझ नहीं आई, फिर फरमाएं।
1: मैंने कहा कि ये जो आपने बताया सब, ये सारा चीज़ें मंजरनामा आपने बताया कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे गैर मुल्की या मुसलमान जो है डैनिश सारे इन्हीं पार्टियों में जाते हैं, वजह क्या है
2: इसकी? मेरा ख्याल से जो देखे सब की अपनी अपनी वजह होगी, मैं जो समझता हूँ वो वजह ये है कि इन पार्टीज में सीट आसानी से निकल जाती है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ना आसान होता है, इसलिए जो है यहाँ पे करियर बनाना आसान होता है। ये मेरी अपनी एक जाती राय है, आप उनसे पूछे वो आपको जवाब देंगे, लेकिन मेरी ये जाती राय है, क्योंकि नहीं तो आप ये भी पूछे ना उनसे कि अब आपकी हुकूमत आई है, आपकी पार्टी अब इक्तदार में है, तो क्यों नहीं अब आपने जो इतने 10 हफ्ते लगा के मैनिफेस्टो तैयार किया, हमारे लिए नरमी क्यों नहीं है पासपोर्ट पे, हमारे लिए नरमी क्यों नहीं है फैमिली सामफियन पे, हमारे लिए नरमी क्यों नहीं है जो आपकी जो तरीका वारदात होती है मुसलमानों को गंदा करने में, क्यों नहीं है नरमी इन चीजों पे, क्यों नहीं नरमी? आपने क्यों नहीं ये बुरखा बैन हटाया, आपने क्यों ये कानून नहीं हटाया कि अब औरतों को अलहदा स्विमिंग करने की दोबारा इजाजत मिलनी चाहिए, आपने आपने क्यों नहीं हटाया कि ये जो इन्होंने कानून बनाया है मुसलमान औरतों के को टारगेट करने के लिए कि भाई आप जो है लाजमी आपने काम करने हैं इतने घंटे, नहीं तो आपको वो चांस आप चांस प्लेट जो है वो क्यों नहीं आपने किया? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सवाल बनते हैं इनसे, पूछना चाहिए इनसे बिल्कुल।
1: और दूसरा सिकंदर, जो SF पार्टी शामिल हुई हुकूमत में, इन्हीं स्टेशन हुकूमत से बाहर रही थी, इन्हीं स्टेशन की बातें आ रही हैं कि हम पार्किंग का कुछ करेंगे, बच्चों के 22 साल तक के जो बच्चे हैं उसको फ्री सफ़र की सहूलियात देंगे, पेंशनिस्ट के लिए कुछ करेंगे, दांतों का इलाज मुफ्त होगा, ये जो नारा इसके मुतल्लिक बताएं।
2: देखें सबसे पहली बात यह कि जो मैंने अभी पहले आपको बात बताई है वो थी स्पेसिफिकली हमारे मुतल्लिक, तो उस पर तो मैंने आपको एक बता दिया है। आगे आपकी बात सही है कि इसके अलावा मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी चीजें भी हैं, उसमें ये बड़ी अच्छी चीज है कि जो हुकूमत जो 22 साल से जो कम साल के बच्चे होंगे उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट होगी, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा ये बताते हैं कि उसके अलावा बताते हैं कि जो छेनले है वो इन स्टेशन ने कहा कि वो फ्री होगी, लेकिन वो कल ही लास्ट लोके ने सबके लिए फ्री होगी, कल ही लास्ट लोके ने बयान दे दिया कि ये जरूरी नहीं है सबके लिए होगी। इस पर बहस चल रही है कि भाई मैनिफेस्टो में फिर लिखा क्या है और आपकी पॉलिसी क्या है। तो इसके अलावा अच्छी चीजें हैं ओवरऑल सोसाइटी के लिए, लेकिन हमारे लिए जो है ना, मैंने इस पर एक तबसरा भी किया है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, कि मैंने लिखा कि आप हमें फ्री दांतों के लिए तो आप दे देंगे, आप हमारे बच्चों को ट्रांसपोर्ट भी दे देंगे, लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो आप नहीं दे रहे हमें, वो आप नहीं कर रहे। तो इसलिए देखिए राजे साहब, आप जिस मुल्क में रहते हो ना, अगर आपकी इज्जत ही नहीं है, अगर आपको एक बराबर का शहरी नहीं समझा जाता, तो फिर आपको बेशक ये आपके दांत साफ कराते रहे, उससे मैं समझता हूँ कि इंसान की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जाना वो उससे कायम नहीं होती।
1: ये बात सिकंदर आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखे ना हमारे पड़ोस में अभी सितंबर में इलेक्शन होंगे, वहां तो कम्यून के रीजन के पार्लियामेंट के एक ही दिन गालिबन होते हैं, तो ये उसके जो है वो ट्रांसपोर्ट पेंशनिस्टों के लिए फ्री है सब, मतलब पेंशनिस्टों के लिए पास उनका फ्री है, बहुत सारी सहूलियात है, तो बाकी चीजें उनको नजर आ जाती हैं सियासतदानों को। कम्यून में देखे ना, चूंकि आप खुद कम्यून में बैठे हुए हैं, जब लोग अप्लाई करते हैं उनकी इनकम कम होती है, तो फिर कम्यून को सहूलियात देती है, दांतों को सहूलियात देती है, पेपर वर्क इतना ज्यादा हो जाता है कि कई लोग जो है इसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते, हालांकि कानूनी उनको सहूलियात मिल जाती है, आखिर में जाकर पैसे ये खजाने से निकालने हैं। तो ये दांतों वाला एनकों वाला ये जो एक माफिया सिस्टम है, एक तबका ऐसा है जिसको जो है प्रोमोट किया जा रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त है लेकिन जब आप अपोटिक से खरीदते हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, जिसके पास नहीं है फिर वो कम्यूनों में जाता है, फिर वो सहूलियात लेता है, तो सिस्टम आखिर जाकर फिर भी कम्यून में मांगने का ही बनता है। तो पहले से ये सारी चीज़ें ठीक कर दी जाए, आपको वाली बात इज्जत भी दी जाए और ये चीज़ें भी ठीक कर दी जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा खजाने पर?
2: मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। अभी पिछले दिनों एक इकोनोम ने या किसी एक्सपर्ट ने ये भी बकाया है कि अब ये जो मम्स जो है ये हाफ करना चाह रहे हैं खानों की चीज़ों पे और फ्रूट और सब्जियों पे बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं। इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जब ये प्रैक्टिकली आइए सामने जब आप लाएंगे तो उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे आप समझ लें ये जो एक चेन होती है सारे जो प्रोडक्शन चेन होती है ये जरूरी नहीं कि ये सारा जो आवाम है उस को ही ये बेनिफिट मिले। ये जो एक प्रोडक्शन चेन होती है, यानी कि पहले सामान बनता है, फिर आगे जाता है, फिर एक्सपोर्ट होता है, फिर वगैरह वगैरह करते करते मार्केटों में पहुंचता है, उस चेन में ये बहुत सारा ये जो मम्स का जो जो चक्कर है, ये उधर शायद उनको भी ज्यादा बेनिफिट होगा और वहां से जो है ज्यादा ये जो परसेंटेज आए वहां से जो है उनको होगा, लेकिन हमें जो कंस्यूमर है हमें उस तरीके से ये इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस प्रोडक्शन चेन में जो ये रियायत दी गई है उधर ही पूरी कर दी जाएगी। तो बहरहाल ये तो चीजें अभी देखने वाली हैं कि अब आगे किस तरह होता है, क्या वो करते हैं, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ कहा कि हम करेंगे, अब कब करेंगे ये अब देखने वाली बात है, कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है।
1: सिकंदर, आप खुद पार्लियामेंट में रहे, आपकी बड़ी मजबूत आवाज थी और आप सिस्टम को समझ चुके हैं और जानते भी हैं सिस्टम को। ये जो छुप छुपा कर जो बातें की जाती हैं, कागज लिखे जाते हैं, एग्रीमेंट पार्टियों में होते हैं कि ये करना है ये नहीं करना, लोग दो चार दिन बातें करेंगे, दो महीने के बाद फिर भूल जाएंगे और जो कुछ अंदर लिखा हुआ है ये फिर आपस में जो है मिली भगत जिसे कहते हैं, यही सिस्टम अब चलेगा?
2: देखें, बात ये है कि लोग बहुत तंग हैं और मैं सिर्फ मुसलमानों की माइनॉरिटीज की बात नहीं करूंगा, मैं बजाते डेनिश मैं कहूंगा कि सारे बड़े तंग ऐसे हैं कि खाने हला महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। हम देख रहे हैं कि उली हद बहुत बढ़ती जा रही है, जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, जो आम तबका है वो मुश्किल अपना टाइम गुजार रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो हालात हो रहे हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक सियासी चेंज आएगा, क्योंकि अगर ये सियासी चेंज ना आया तो लोग जो हैं वो अब फेड अप है, लोग अब एक्सेप्ट नहीं करते ये जो पुराने स्टाइल की जो सियासत है कि बात आप एक करें और बाद में जब आपको पावर मिले तो आप कुछ और करें। तो यकीनन कोई ना कोई चेंज आना है, नहीं तो सियासतदानों के लिए ही मुश्किल हो जाएगा,
1: सियासतदानों के लिए मुश्किल हो जाएगा सिकंदर। लेकिन एक मजबूत वॉइस भी तो होनी चाहिए, एक लीडर का कद काट, जिस तरह कोई इसमें कोई शक नहीं है, मेहते का कद काट है, लास लूके का कद काट है, और भी कोई लीडर होंगे जिनका कद काट होगा, लेकिन नई क्यादत जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही, कोई लीडर इतना नहीं है जो इतना पॉपुलर हो।
2: नहीं देखें, असल में बात ही ये है कि आपको पता है लास लूके जो है वो वैसे ही उसकी पार्टी खत्म होने लगी थी, ऊपर से किस्मत है ना कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड का वो कट्टा खोल दिया, उससे हुआ ये कि ये फॉरेन मिनिस्टर था तो इसके ये फिर मेन हो गया, ये अमेरिका गया, तो उसके बाद फिर जो है पार्टी जिंदा हो गई। और आप देखें कि इस वक्त जो पुरानी पार्टीज हैं वो ही जो है लास्ट लुके ही वो था जो ये डिसाइड कर रहा था कि कौन सी हुकूमत बने। इसी तरह आप देखें कि मेरे फर्ज है इसने तीसरी बार बन गई है, तो ये पुराने सियासतदान जो है इनका आप देखें कि इनमें होता ये है कि इनके पास सारी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो इनके सर्विस में होती है, फिर इनके पास बहुत पैसा होता है जिससे ये कैंपेन करते हैं, लोगों के सामने आते हैं, फिर तीसरा मीडिया एक्सेस इनके पास होता है जिस वजह से जो है लोगों को ये दूसरा ऑप्शन नहीं देते। मैं आपको एक बड़ी मजे की एक बात बताता हूँ, इस वक्त डेनमार्क की जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 2% इन एस्टेब्लिश पार्टीज के मेंबर्स हैं, अंदाजा लगाएं सिर्फ 2%। तो इस फिगर को अगर आप मद्देनजर रखें तो इसका मतलब ये है कि इनके ज्यादा तो इनके फॉलोअर्स नहीं है, ज्यादा लोग तो इन्हें फिर पसंद नहीं करते, ज्यादा इनके साथ एंगेज नहीं कर रहे, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो यही पार्टीज होती हैं जिनको आप वोट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो लोग हैं वो फिर इन्हीं पार्टीज में से किसी पार्टी को वोट देती है, और इसीलिए ये पार्टी जो जो जो हुकूमत है और ये जो पार्टीज हैं ये कोशिश इनकी यही होती है, जो मेरा ख्याल है कि नई पार्टीज जो है वो ना आए, क्योंकि नई पार्टीज आएंगी तो फिर जब इलेक्शन होंगे तो फिर जो वोटर है वो उनको वोट दे सकता है, नई पार्टीज को इनको जरूरी नहीं है देना। तो इनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से जो है नई पार्टीज जो है वो ना आए ताकि यही लोग रहें। अभी पिछले दिनों में फी अख्यास को फेलपेक ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो 20,000 सिग्नेचर है ना पार्टी बनाने के लिए इसको 20,000 से 50,000 कर दिया जाए, जबकि देखा जाए कि इस वक्त 20,000 तो कहने को है कि वैसे जब आपने देने हो तो 40,000 बनते हैं, क्योंकि अगर अमराजा साहब आपने अगर एक देना है तो फिर आप पहले जाके अपने मीडिया डी इस्तेमाल करके आप एक बार साइन करेंगे, फिर 7 दिन गुजरेंगे, फिर आप दोबारा जाके मीडिया डी से साइन करेंगे, फिर आपका एक साइन बनता है। इस तरह तो इसका मतलब ये है कि
1: ठीक है आईन में जो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर जमहूरियत कहाँ गई?
2: जमहूरियत जो है यही बात है कि जमहूरियत इस वक्त बड़ी एक चैलेंजिंग फेस से गुजर रही है, यहाँ पे सियासत जो है वो प्रोफेशनलाइज हो गई है बहुत ज्यादा, और ये इशू है बहुत बड़ा और ये आगे भी इशू बनेगा, और इसीलिए बहुत सारी ऐसी आप समझ लें कि लोकल्स और लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसी मूवमेंट सामने आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि जमहूरियत जो है इट्स अंडर प्रेशर इन डेनमार्क। और जिस तरह के कई साल पहले जमहूरियत एक अच्छी तरफ जा रही थी, एक बेहतरी की तरफ जा रही थी, अब कुछ सालों से जमहूरियत जो है वो रिवर्स में जा रही है।
1: जमहूरियत बड़ा अच्छा फिक्र आपने कहा कि जमहूरियत रिवर्स में जा रही है, तो सिकंदर इसी तरह बाकी हमारी जो लोकल खबरें होती हैं, लोकल बातचीत चलती रहती है, पाकिस्तानी गैर मुल्की अपना अपना इजमा करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हकूक के लिए फाइट भी करते हैं, तो क्या हमारी कम्यूनिटीज सिर्फ बंद कमरों के अंदर या जहाँ मौका मिल जाए वहाँ बात करते हैं, क्या उनको जमहूरी हक मांगना हो? अब जिस तरह सियासी पार्टियों में जो लोग हैं वो अपनी पार्टियों के सामने कोई इत्तेजाज नहीं कर सकते, ये कानून इजाजत नहीं देता?
2: कानून तो इजाजत देता है, और वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि वो अपनी अंदरून लाइंस में पार्टीज के अंदर वो क्या बात करते हैं कि क्या सिलसिले चल रहे हैं। अलबत्ता मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारी पब्लिक डिबेट है, जो हमारे कौमी अखबारात हैं, जो टीवी हैं, उसमें तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नुमाइंदगी बहुत कम है। अब आप देखें कि मैंने भी पिछले दो तीन एक महीने में कुछ 3-4 कौमी अखबार में मैंने कॉलम लिखे होंगे, तो मैं इस चीज को जरूर मिस करता हूँ कि हमारी और आवाजें जो हैं, खा वो डेनिश, तुर्की, पाकिस्तानी, अरबी, कोई भी हो, तो सियासत में इन्वॉल्व है, वो कॉलम लिखा करें, वो पॉलिटिकल डिबेट में इस तरह हिस्सा लिया करें। ये सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा देना ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि जहाँ पे डिबेट हो रही है, जहाँ पे फैसले किए जाते हैं, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, उस जगह पे आप लिखें, उधर आप अपनी आवाज को करें। मैंने अभी एक कॉलम लिखा था पिछले दिनों जिसमें मैंने ये लिखा था कि हम इस बार जो सबसे बड़ा जो लूजर है ना इस इलेक्शन में, वो हम मुसलमान है, माइनॉरिटीज हैं, और उसमें मैंने ये उसके बाकायदा तमहीद बांधी इस बात की, मैंने बाकायदा इसको अपने एनालिसिस दिए उसमें, तो मैंने उसमें ये लिखा, एक फिक्रा लिखा, मैंने कहा कि इशू हमारा अब ये हो गया है कि हम लोग जो हैं जहाँ पे हमें लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, वहां पे हमारी आवाज है ही नहीं। अब हमारे जितने भी ये साथी हैं डिफरेंट पार्टीज में, ये अगर लिखें, ये अगर कॉलम लिखें, ये मीडिया में आए, अपनी आवाज उठाएं, तो फिर ही प्रेशर आप बिल्ड करते हैं ना, वैसे तो आप प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकते। तो मेरी उसमें मैंने कॉलम में इस पे पूरी तफसीलन मैंने लिखा है कि क्यों मैं समझता हूँ कि हम जो मुसलमान हैं हम सबसे बड़े लूजर हैं इस इलेक्शन में, और उस हारने की रीजन भी हम खुद हैं। उसमें फिर मैंने कहा, ये लिखा है कि क्यों हम रीजन है। मैं अपने जो जितने भी है सामाईन है उन सबको मैं ये कहूंगा कि वो जरूर मेरा कॉलम पढ़ें, जिसमें मैं अपनी वो एनालिसिस देता हूँ कि हम हमारी अपनी गलती क्यों है कि हम ये इलेक्शन हारे।
1: लेकिन सिकंदर ये बहस भी शुरू हो जाती है कि आप इतने कॉलम लिखते क्यों हैं। आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो बैकग्राउंड के मुसलमान हैं या अपना गैर मुल्की हैं, वो कितने लोग हैं जो सियासत में हैं, जो कॉलम लिखते हैं, कितने आप पढ़ते रहते हैं उनके, कोई तादाद है इस तरह की?
2: मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी का।
1: तो लेकिन ये सुनने में आया, मैं किसी ने कहा जी कॉलम लिखने से क्या होता है,
2: ये तो मेरे ख्याल से कुछ जाहिल बंदा ही कह सकता है कि कॉलम लिखने से क्या होता है। जहाँ पे डिबेट हो रही है, जहाँ पे आप ओपिनियन मेकिंग करते हैं, वो आप अपने घर में बैठ के कमरे में तो नहीं ना करते, वो आप पब्लिक डिबेट में ही करते हैं, ऑफलाइन डिबेट में ही करते हैं। ये जिसने भी आपको कहा है, वो मैं समझता हूँ कि वो सियासी तौर पे मुकम्मल तौर पे वो अभी ABC कभी नहीं उनको पता होगा, क्योंकि कॉलम लिखने से ही, टीवी में आने से ही आपका आपकी जो एक आवाज है वो सुनी जाती है, आप ओपिनियन मेकिंग करते हैं, आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो तब होगी तब आप क्या कहते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए आप काम कर सकते होंगे। बहुत जरूरी होता है
1: सिकंदर, जिस तरह देखे ना आप कॉलम लिखते हैं, अभी हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं वो भी जो है वो लिखते रहते हैं, मुलाकातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंडस्ट्री से मिलते हैं, तो एक्टिव रोल अदा करते हैं, आप क्या कहेंगे उनके मुतालिक?
2: देखिए मैं ये कहूंगा कि हमारे जो सफीर मोहतरम है अम्बेसडर शुएब सरवर साहब, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने भी कई अम्बेसडर्स देख चुका हूँ, बड़े अच्छे से अम्बेसडर आए हैं हमारे डेनमार्क में, लेकिन इन जैसा ना कभी आया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इन जैसा कभी आएगा। देखिए इनकी जो ओपन डोर पॉलिसी है कम्युनिटी के हवाले से, मैं समझता हूँ वो एक बिल्कुल बेमिसाल है। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी एम्बेसडर ने इस तरीके से कम्युनिटी के साथ एंगेज किया हो और इस तरीके से अपनी ओपन डोर पॉलिसी रखी हो कि किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई इश्यू हो, तो वो एम्बेसडर साहब से डायरेक्ट जो है राबता कर सकता है। मुझे पता है कि हमारे जो बड़े जो मोहतरम पर्सनैलिटीज हैं इस कम्युनिटी की, उन सब का अच्छा रابطہ है, वो सब के साथ एंगेज करते हैं। और आप देखें कि अभी पिछले दिनों मैं खुद तो वहां नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे एल्बस लोन में कोई मीना बाजार या कोई इस तरह का कोई एक सिलसिला था, कोई कल्चरल प्रोग्राम, उसमें एम्बेसडर साहब जो है हमारे पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, उन्होंने 14 मुल्कों के एम्बेसडर जो है उनको एक प्लेटफॉर्म पे वहां पे लेके आए, हमारा कल्चर दिखाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा मुझे पता है कि वो यहाँ की हुकूमत के साथ यहाँ के इनके सिलसिले जो है बड़े अच्छे कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान और डेनमार्क के टाइज को वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आगे लेके चल रहे हैं। इसके बाद अब ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो काउंसलर सेक्शन है उसमें किसी का भी वास्ता पड़ेगा। मुझे पिछले दिन कोई कह रहा था कि उनकी जिस तरह की वहां पे सर्विस है, जिस तरीके से वो तावन करते हैं, कोई खुदा न खास्ता हो जाए मजबूरी, कोई खुदा न खास्ता कोई इशू ऐसा हो जाए, एमरजेंसी पड़ जाए, तो ये एम्बेसी फुल तावन करती है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी अल्लाह पाक उनको जन्नतों में जगह ता फरमाई, अभी PhD स्टूडेंट थे जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, फोत हो गए हैं, तो उनको पता चला, उसमें मुझसे किसी ने यहाँ पे रब्ता किया, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने रब्ता किया मुझसे, कहा कि भाई ये हो गया वाक्य, हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो एम्बेसी से हम रब्ता करना चाह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ तावन करे। मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने फोन किया और मैंने जो अली साहब हैं, अली सतार साहब जो काउंसलर हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ये वाकया हो गया है। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त उसी सेकंड में कहा, मुझे जिन्होंने आपको फोन किया मुझे उनका नंबर दें ताकि हम उनसे रबते में आए और हम पूरा तावन करेंगे। तो फिर आपके सामने बकाया अच्छे तरीके से, मतलब जो कम्युनिटी एक, एक एक पाकिस्तानी के लिए, एक नौजवान के लिए जो इस मुश्किल टाइम से उनकी फैमिली जो गुजर रही थी, जो एक हादसा हुआ है उस पर जिस तरीके से वो उन्होंने फौरन रिएक्ट किया, कम्युनिटी का साथ दिया, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा उनका एक अमल है, अच्छा एक उनका एक तरीका है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कम्युनिटी जो है इन्हें बहुत ही इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि एम्बेसी और एम्बेसडर साहब जो हैं वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम में इनको हमेशा हम सबको साथ देना चाहिए।
1: सिकंदर, ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि एम्बेसी का अमला हर किसी से तावन करता है, और आपने भी बताया, उबैदुर्रहमान कुरैशी साहब ने भी ये बताया। सिकंदर, आप बात कर रहे थे तो आपने देखा कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम हो रहा था, कुछ तंजीमात भी वहाँ मौजूद थी, उस पर जो है सफीर मोहतरम के मतलब भी बात की गई, उसके बाद एक इश्तहार भी हमारी नजरों से गुजरा। तो एज ए पॉलिटिशियन आप भी चूंकि लोकल है, आप क्या कहेंगे?
2: जी राजा साहब, मेरे नजरों से भी वो गुजरा है और मैं समझता हूँ वो बड़ी एक शर्मनाक एक आर्टिकल था जो लगा है। और मैंने जब पहले देखा है तो मुझे यकीन नहीं आया कि हमारी जो यहाँ की इतनी सारी जो सियासी तंजीमें हैं उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया हो, ये मैं इस चीज को मान रहा नहीं था। उसके बाद मेरी जो मियां मंशा साहब हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे फिर यही बात बताई कि जिस तरीके से इस चीज को पेश किया जा रहा था ऐसी हरगिज बात नहीं थी। वो एम्बेसी साहब के साथ बड़े अच्छे तलकात हैं, एम्बेसी के साथ बड़े अच्छे तलकात हैं, तो ये कोई स्पिन दिया जा रहा था। तो फिर मैंने बाद में देखा कि आपने भी जो डिफरेंट सदूर हैं, जो डिफरेंट सदर हैं इनके पार्टीज के, उनसे आप बात कर रहे हैं और सभी इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल ऐसा बायकॉट का एम्बेसी का तो कोई बात हमने की नहीं है और ना ही हम इस चीज को मानते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि इन सब ने उस जाली खबर को या नकली खबर को या आप समझ रहे हैं कि जो किसी ने को जो शैतानगी की है उस चीज को जो है इन्होंने सबने डिनाई किया। और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम भी होता है, क्योंकि आप अगर जिन तंजीमों के नाम लिखे हुए थे उन सब ने अगर बाद में ये कहा कि हमने ये नहीं लगवाया आर्टिकल और हमने इस मीडिया में और हम इसको कंडेम करते हैं, तो फिर मैं समझ ये बहुत अच्छी बात है, यही तो थी मेरी इनसे। लेकिन फिर मेरा ख्याल ये है कि इन सब को जिन जिन तंजीमों के वहां नाम लिखे हुए थे उन सब को उस मीडिया से रब्ता करना चाहिए और उस मीडिया से कहना चाहिए कि आपने हमारी तंजीमों के नाम क्यों लिखे हैं। और वो मीडिया जो है वो बाद में, जिसे हम डेनिश में पेक्टील से कहते हैं, कि वो बाद में दोबारा आर्टिकल छापे कि ये आर्टिकल जो था इसमें फैक्ट्स गलत थे, इन तंजीमों ने ये नहीं कहा, क्योंकि नहीं तो ये साइबर क्राइम बनता है, ये डेनिश लॉ के मुताबिक भी क्राइम बनता है और यकीनन ये पाकिस्तानी कानून के तहत भी एक क्राइम बनता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी तंजीमें हैं उनके जो सदर हैं जिन्होंने आपके रेडियो पे बाद में कहा है कि हमें तो नहीं पता ये किस तरह लगा है और हम इसको कंडेम करते हैं, उन्हें उस मीडिया से रابطہ करके कहना चाहिए कि आप बताएं ये किसने लगवाया है, आपने हमारा नाम इस्तेमाल किया है तो ये किसने लगवाया है, और आप इसकी प्रैक्टिकल से करें, आप दोबारा आर्टिकल बनाएं जिसमें आप लिखें कि ये आर्टिकल गलत था, इसमें फैक्ट्स गलत है, और अगर वो ये नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ पर्चा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी तंजीमों के नाम लेके ये कह दें कि इन सब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी का बायकॉट किया जाए। अगर ये बात नहीं हुई, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि आपके रेडियो पे आके सब ने बाद में कहा है कि ये बात ऐसी नहीं है, तो फिर इनको उस मीडिया से रابطہ करके कहना चाहिए, बताएं ये आपने क्यों लगाई है, किसने लगवाई है खबर, अगर आप लोग, हमने खुद नहीं लगवाई। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे चंद लोग हैं या लोग होते होंगे जो एक गलत फहमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने वो खबर बिल्कुल देखी है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जितने भी तंजीमें हैं उन सब ने, तकरीबन जो मैंने देखा है, उन सब ने कहा कि ये झूठी खबर है, गलत खबर है, हमने ऐसी बात नहीं की। हाँ, मेरा मशवरा एक बार फिर दोहराता हूँ, यही होगा कि वो उस मीडिया से आप रब्ता करें, उनसे कहें कि आप किसने ये लगवाई है, अगर हम आप लोगों ने हमारे नाम लिखे हैं तो किसने लगवाई है खबर, हमने तो नहीं लगवाई, और वो इसको सही करें, बगैर से करें, और अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर ये क्राइम बनता है, ये साइबर क्राइम बनता है।
1: सिकंदर, आखिर में आप क्या कहेंगे कि चूंकि इलेक्शन तो खत्म हो गए, इलेक्शन के बाद आप उस दिन से एक्टिव रहे, आपने एक्टिव रोल अदा करते हैं, सिटी काउंसिल में भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं और बिल्कुल हर वक्त सियासत के साथ जो है वो टच भी रहते हैं, अपना काम भी आप करते रहते हैं, बहुत सारे मसाइल भी आते जाते रहते हैं, तो इन सारी चीजों को आप मैनेज कर लेते हैं, तो सबको मैनेज करना चाहिए, कुछ सियासत में जाना कोई वो क्या समझते हैं कि कोई मजाक तो नहीं है, कोई खेल तो नहीं है कि बस मैंने पार्टी चला गया, मैंने मेंबरशिप ले ली, जीत गया, मुझे सीट मिल गई, मेरा एक नाम बन गया, तो ये सियासत तो नहीं है।
2: नहीं, मेरा ख्याल से सियासत जो है वो आपको ऐसी करनी चाहिए कि पता चले कि आपके वोटर्स को कि आप अगर उनसे वोट लिए हैं, उन्होंने आपको वोट दिए हैं, तो फिर आपने उनकी नुमाइंदगी भी की है। मैं इस चीज को, मैं सच्ची बात है बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज यूज करूंगा, मैं तो उसको मुनाफ़कत समझता हूँ कि अगर आप किसी एक ग्रुप के वोट लें लेकिन बाद में आप जाके उनकी नुमाइंदगी ना करें, ये तो मुनाफ़कत हुई। तो मैं तो समझता हूँ कि जिनके आप वोट ले रहे हैं, जिनसे आप वोट ले रहे हैं, तो फिर आप, ये जरूरी नहीं है कि आप जो वादे करें वो पूरे हो जाए, तो सियासत में ये इट्स नॉट, ये गारंटी तो नहीं होती इस बात की, लेकिन ये जरूर है कि जिनके आप वोट ले रहे हैं उनके लिए फिर आप नुमाइंदगी भी करें, उनके लिए फाइट भी करें। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बेसिक उसूल होना चाहिए सियासतदानों का, सियासत में आने का, कि अगर आप किसी से वोट ले रहे हैं तो उनकी नुमाइंदगी भी करें। ये मैं समझता हूँ गलत बात है कि आप वोट एक स्पेसिफिक ग्रुप के लें, बाद में जाके अब किसी और की नुमाइंदगी करें।
1: सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। आखिर में आप कोई डेनिश में मैसेज देना चाहें?
2: यही ते गदी का नसीद है, मैं उसके दिल चाहे ते मुखचिल, मैं उसके दिल चाहे ये पूरी चीख फती, ते है ते वो है तू फॉर्म ऑफ फ्रॉम टू, ते है ते वो फॉर्म ऑफ तीन पांच फ्रॉम टू, ते है ते वो तू हा कैस्केड इन्फ्लुएंस स्पर्समोल है ते ई वी स्पर्समोल एट ए टाइम तब सर्फर और forme dit børns fremtid, eller overlader du det til andre? Jeg tror på det første. Man skal selv være med til at forme sin børns fremtid. Man skal selv være med til at aktivt deltage i det samfund, man lever i. Det her, det er vores land. Jeg elsker Danmark. Danmark er mit land. Jeg har rødder i Pakistan. Jeg har en kærlighed til Pakistan. Jeg er født i Danmark. Danmark er mit land. Det her, jeg bor. Det her, jeg har min hverdag. Og hvis ikke jeg deltager i demokratiet, hvis ikke jeg deltager i beslutningsprocesserne, hvis ikke jeg deltager, og jeg behøver ikke at være enig. Vi kan godt have forskellige holdninger. Vi kan godt være uenige. Det er det, der er det smukke med demokratiet. At argumenterne mødes, og de brydes, og deraf kommer der så løsninger. Det er demokratiet, og det er sådan, det fungerer. Så det er vigtigt, at man deltager. Det er vigtigt, at man gør sin indflydelse gældende. Det må være mit budskab til de unge. Det må være mit budskab til alle derude. Husk at deltage. Husk at deltage. खुश का दिल से। तक हुआ
1: सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। समान नाज़रीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक जो कि फ्री ग्रोने पार्टी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा आपने भी सुना, ये लाइव प्रोग्राम में होता है, सब कुछ चला जाता है, तो हमारा किसी मुतफिक होना जरूरी नहीं। अगर आप कोई बात करना चाहें, अपनी राय देना चाहें, तो आपके लिए आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: और कुछ लोग छुट्टी पे, कुछ लोग आधी छुट्टी पे, कुछ लोग पूरा दिन काम पे, यानी कि मिला जुला रुझान था। अब आते हैं कि जो हुकूमत बन गई है, तो मैं सबसे पहले सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि काफी महीने लगने के बाद एक दिन एक जगह पे आके मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो बैठी हैं और उन्होंने हुकूमत साजी कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हुकूमत साजी में जमातें शामिल हैं, ये बड़े सोच समझ के इन्होंने बैठ के ये फैसले किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए ये जरूर सोचेंगे। जैसे देखे खबरों में आ रहा है कि थैले को फ्री होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए, पार्किंग के मसाइल हैं, और आपको पता है एल्ड्रा जो हमारे प्लाई एम है और सेहत के शोबे हैं और बेशुमार जगह स्कूल हैं ताकि वहां पे कुछ बेहतरी आए। तो मेरा ख्याल ये सारी जमातें को कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अवाम को जरूर देंगी, क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं और जैसे ही जमातों के इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया है, वो आपने देखा है कि अवाम ने ऐसे ही लोगों को ऐसे मुंतखब किया है कि उन्होंने ये बता दिया है जी कि आप जो हमारे मुतालबात, जो हमारी चीजें सही सीमत में नहीं लेके आते, तो आपका यही असर करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी जो कि 50 से ऊपर मैंडेट लेती थी, सोशल डेमोक्रेट वो 38 पे आ गई है, ऐसी और भी पार्टियां जो है जिन्होंने कम मैंडेट हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हुकूमत बनी है ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ ना कुछ जरूर बेहतर जो है वो चीजें ले। अभी शुरू शुरू में आपको पता है तनकीद भी होगी, बेशुमार चीजें ऐसी आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी 3 4 महीने 6 महीने में आफ्टर अगर जूल कह लें, नया साल जब स्टार्ट होगा तो फाइनेंस लो फाइनेंस का जो जब स्टार्ट होता है साल, तो फिर मुझे उम्मीद है किसी न किसी चीज में बेहतरी आएगी। जैसे उन्होंने कहा है फुकरून के ऊपर से हमने मम्स उठा लिया है और चीजों पे हम ऐसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का वो सोच रहे हैं 22 साल तक, और भी काफी चीजें जो है कि पाइपलाइन में है। अदनान को और मोहतरम शाह साहब को बेहतर पता है, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इनशाला ये हुकूमत जो है अगर इसने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो ये कामयाब होगी, नहीं कारकर्दगी दिखाएगी तो शर्त तो फिर आपको पता है अवाम यहाँ पे तो डेमोक्रेट डेमोक्रेसी चलती है, अपने वोट के जरिए हुकूमतों को आगे पीछे ये करते रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह डेनमार्क के लिए बेहतरी होगी।
1: बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। अदनान, आपने दोनों साथियों की बातें सुनी, उन्होंने बताया डिमांड्स भी कर रहे हैं, तो आपने देखा जिस दिन हुकूमत बनी सारे वज़रा जो है मिनिस्टर्स बाहर आ रहे थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि सब जो है माशाल्लाह बड़े खुश थे, जैसे कोई मैदान जो है वो फतेह करके बाहर निकले हैं। तो अब ये मुजीब साहब ने फरमाया कि इन सिस्टर ने कहा जी कि दांतों का इलाज फ्री होगा, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से भी नोट करते रहते हैं, तो एज ए तजिया निगार आप इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं?
2: राजा साहब, मैं इसमें ये कहूंगा कि आज कौन लोग तेज था, और यहाँ पे जैसे आपको पता है फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर जो मच्छी से फायर था वो भी आज आया हुआ था, और वो कोपे फॉर्मैन है जो जो पार्टी को लीड करता है, और उससे सबकी बात हो रही थी, तो उसने एक ब्रेकिंग न्यूज हमें दी थी कि मैं फैंसूर वैल में बैठा हूँ जहाँ से ये सारे पैसे वगैरह निकलते हैं। तो वो यही कह रहा था कि आप सब ने, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो वादे किए हैं ना उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अभी हम उसपे क्या कहते हैं पूरा हमने जो प्लान है वो एक प्लान बना बैठा हुआ है, मगर उसके अंदर ये है कि आस्ता आस्ता चीजें जो है ना वो बाहर आएंगी। सबसे पहले प्रायोरिटी मैं आपको कह दूं, जिस तरह ये मजी साहब ने कहा है कि इनकी ये है कि ये मम्स वगैरह इसको क्या कहते हैं खत्म करना है और इसको कंट्रोल करना है, और बेंजीन को और डीजल और इन चीजों को देखना। उसके बाद इनका प्लान ये है कि ये जो डिबेट शुरू हो गई है ना कि पहली मुसलमान बन गई है, तो ये एक क्या कहते हैं एक सारी मुल्क है तो हम उस तरफ जाने की जरूरत है, मगर उसमें भी एक मसाइल है जो बात अब क्लियर की जाए कि बंदे ने ये भी देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इनका बीएमपी जीएमपी बिजनेस कितना है, तो इनने ये भी बैलेंस रखना है कि इनकी इकोनॉमी कैसे चल। आप पूरा पंगा डाल लें मुस्लिम के साथ तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि मौत मेरे में इतने ज्यादा ही क्या कहते हैं बात करने की जरूरत होती है, मगर बंदे को थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सीरियस भी होना पड़ता है और हर चीज को देखना पड़ता है, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जब मेरे पास बैठ जाएगी हमारा लर्निंग मिनिस्टर भी बैठ जाएगा तो हम इससे जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जरा सब्र करें और थोड़ी क्या कहते हैं आप लोग ये देखें कि इसके अंदर मुसलमानों को टारगेट करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो मैं आपको एक छोटी सारी मिसाल दे देता हूँ कि मैंने आज कुछ लोग कुछ जगह पे हम लोग गए और हमने वहां पे

0: देखा कि मुसलमान बाहर हो जाएं तो 70% चीज ही नहीं बचा। तो इसलिए ये तो थोड़ी बहुत सेंसिबल बात करनी चाहिए और सेंसिबल देखना चाहिए। बोलना बड़ा आसान होता है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान होता तो मिस्टर स्मिथ को जब मौका मिला था ना गवर्नमेंट बनाने का, तो गवर्नमेंट बना लेता, मगर उसने नहीं लिया चांसेस, तब उसकी मर्जी। आप दूसरे जिन्हें चांसेस दिए उनको बैठने दे और उनको काम करने दे और उसको मौका तो देंगे। वो तो कोई उसको हमने बात तो नहीं निकाला होगा, कोई काम करना चाहेगा तो सोबत बोला टेबल पे आ जाए, उसकी अपनी मर्जी है। बैठ के बोलना चाहता है बोलता रहे, मगर हम लोगों ने जिनने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन लोगों ने तो काम करना है और इस मुल्क को चलाना है किसी ना किसी तरह। तो ये तो अब उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है।
1: शाह साहब, जब आइन कहता है कि इलेक्शन लड़ने की उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर ये डेनिश पीपल्स पार्टी या दूसरे सियासतदान इस तरह की बातें, नफरत अंगेज आपस में जो है वो दूसरे के साथ नफरत की जाए सिर्फ वोटों के लिए, तो ये क्यों की जाती है ऐसी बातें?
2: जी बिल्कुल सही आपने यह सवाल किया है, बड़ा रेलिवेंट सवाल है। इसकी वजूहात हम खुद लोग बने हैं। हम लोगों में चंद अनासर ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को तोड़ा है और इनके टैक्स पेयर की रकमों को मिलियंस के अंदर उन्होंने चीट किया और दुबई और दूसरे ममालिक में भाग गए। फिर हमारे जो रवैये हैं हमारे यंगस्टर्स के, वो मर्सिडीज गाड़ियां और दूसरी गाड़ियों को लंबी लाइनें लगी होती हैं और वो सिकल फुटपाथ पे चलाकर गाड़ियां और लेकर जाते हैं। तो ये जो डैनिश है ये राशिस्ट नहीं है। हमें खुद अपने आप को संवारना है, हमें खुद ठीक करना है। लेकिन जैसे कि अभी अदनान ने कहा, मैं इसकी बात पे बिल्कुल तायद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इसको अब टर्न ओवर लेना पड़ेगा। क्यों? कि अब हालात जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के हाथ में है और जो इंटरनेशनल मौसम है वो काफी तब्दील हो रहा है और इसके अंदर इनको जो है अब ये प्रेशराइज होंगे। मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही हमें यहाँ के हालात जो है वो वाजह होने शुरू हो जाएंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने कहा है कि 22 साल तक हम फ्री करेंगे, वो इनको पहले से कर देनी चाहिए क्योंकि आगे तो छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों ने अब एग्जाम दिए हैं, वो तो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन जो पेंशनिस्टों के लिए इन्होंने मुश्किलात खड़ी की हैं कि अभी तक 4 किस्म की पेंशन यहाँ पे मिल रही है लोगों को, और बाद पेंशनिस्ट जो हैं जिनको 2003 के बाद पेंशन मिली है यहाँ पे। पेंशन देखें, जो अरीना पेंशन है उसके अंदर मसला सबसे बड़ा यह है कि खुदा ना खासा कोई आदमी काम कर रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार, कोई ऐसे ही उसके साथ आफत आ जाती है कि वो उसको मजबूरन पेंशन पे जाना जाता है, तो उसको वो पैसे नहीं मिलते जो पहले हमारे जैसे हम लोगों ने 40 पेंशन ली या हम लोगों ने पेंशनें दी हैं फुल पेंशनें, इनमें उन्होंने काफी डिफरेंस किया है। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते, लेकिन उम्मीद ये है कि जो बेटे फ्रेडरिकसन है वो ग्रीन लैंड के हालात को देखते हुए और इंटरनेशनल हालात को देखते हुए डेनमार्क के अंदर हो सकता है, मेरा ये अंदाजा है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में कोई ना कोई यहाँ पे करवट लेगी और इसके डेनमार्क की जो बची कुची साख है उसको बेहतर करेगी और मुसलमानों के साथ बेहतर तल्लक करेगी। जैसे कि अदनान ने कहा, यहाँ पे जो इस वक्त 65% डॉक्टर्स हैं वो मुसलमान हैं, यहाँ के इंजीनियर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो मुसलमान हैं, और यहाँ के जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो फॉरनर्स हैं और पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो इनका काम नहीं चल सकता, लिहाजा इनको जो है वो मैन पावर की जरूरत है। और वो
1: तो शाह साहब, क्या इनिस लिस्टन जो है अपने वायदों पर कायम रहेगी कि जो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां कह रही हैं कि पेंशन बढ़ाएंगे और ये दांतों का इलाज जो है फ्री होगा, ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, क्या ये पार्टियां अपने मौकों पर कायम रहेंगी?
2: देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि इनिस लिस्टन की बात जो है वो सुनी जाएगी, बाकी जो है क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्रियां ले ली हैं वो एंजॉय करेंगे, और इनिस लिस्टन को इसलिए रखेंगे कि कहीं इनिस लिस्टन जो है वो ब्लू ब्लॉक के साथ मिलके इनको कोई प्रॉब्लम ना इनके लिए क्रिएट कर सके,
1: सियासी फटक है ये।
2: हाँ जी, इसलिए ये कोशिश यही करेंगे कि इन लिस्टर जो है ये इसके बात माने, और इसके जो बाकी पार्टियों को देखे ना, कोई सामने नहीं आया, एसएफ का कोई सामने नहीं आया, रेडिकल का अभी तक मुतालबा कोई सामने नहीं आया, ना ही मॉडरेट का कोई मुतालबा सामने आया है कि भाई इन्होंने कौन कौन से जो है मुतालबे सामने रखे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं तजिया नगार कि भाई बेटे फजिस्तान वापस आएगी तो ये एक दफा दोबारा बैठेंगे और फिर उसके ऊपर ये फैसला करेंगे कि किस किस पार्टी की कौन कौन सी। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि ये तो अमीरी बोर्ड के अंदर पहले ही फैसले हो चुके हैं कि कौन सी चीज लागू की जानी है और किस चीज को जो है वो डिले करके अगले सालों पे डाला जाना चाहिए, और ये मुआहदे तो इनके हो गए हैं। अब वाजिया करें कि किस तरीके से
1: चलें, तो जब तक पूरी जो चीज क्लियर नहीं होगी, सफे पूरे सारे नंगे नहीं होंगे। मजीब साहब, आपकी एसएफ पार्टी है तो आपकी पार्टी भी तो डेफिनेट प्रेशराइज होगी।
3: देखिए जी, मैं दोनों अपने साथियों की बात सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी माशाल्लाह तजिया निगार है, दोनों बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को पेश करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि मेरा ख्याल है जो नया साल शुरू होगा 2027, शुरू में ही मेरा ख्याल है आगे चीजें आगे बाहर आएंगी। अभी सारा कुछ जितनी भी ये प्लानिंग है वो हुई है या हो रही है, वो उसको पाया तकमील पहुंचाने के लिए थोड़े से इनको और टाइम लगेगा, क्योंकि अब हुकूमत बन गई है और हुकूमत बनने के बाद आपको पता है जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एसएफ 12 साल के बाद दोबारा हुकूमत के अंदर आई है, तो जाहिर सी बात है उनके पास 5 मिनिस्ट्रियां हैं अगर, तो वो अपनी मिनिस्ट्रियों का कारकर्दगी पेश करेंगे तो आइंदा इलेक्शन में उनको कोई कामयाबी हासिल होगी, वरना तो फिर जैसा मैंने बताया कि जो चंद जमातों का हाल हुआ है इनका भी ऐसा ही हाल हो जाएगा। लेकिन जरूरी चीज यही है कि मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ऐलान हुआ है, अभी इंतजार करें। मेरा जहां तक अंदाजा है, मैं अपनी अपना कह सकता हूँ, ये जो 3-4 महीने होंगे ये दिसंबर तक, ये इन्हीं चीजों में होंगे कि कैसे फैंडिंग होनी, क्या चीज आगे लेके आनी है, क्या चीज अभी पेश करनी है, क्या चीज 2027 में है, क्या चीज 28 में है। तो मेरे ख्याल स्टार्ट उन्होंने लेना है चंद चीजों से और उस पे वो सारे मुत्तफिक होंगे। इन लिस्ट इसलिए मजबूत रहेगी कि उनका ये मुतालबा अगर माना जाता है जी कि एथेन ले जो है डेनमार्क में फ्री हो जाए, तो आपका अगर आपके पास अभी अगर 15 सीटें हैं तो लेक्स हैं तो 25-30 सीटें ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुतालबा है और ये डेनमार्क की सबसे महंगी जो है ना ट्रीटमेंट है थैनले की। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत अच्छी फौसला है और बाकी जमातों को इसके ऊपर एग्री होना चाहिए। और मैं एक और चीज बिल्कुल वाजिया कर देना चाहता हूँ कि ये अभी जो जमातें जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, हमारे मोहतरम शाह साहब कहते होते हैं ये पीडीएम की जमातें हैं, तो ये अगर इन्होंने कामयाब होना है तो इन्होंने अपने अवाम की तरफ देखना है। जैसे नान ने बताया पेट्रोल है, जैसे मैंने कहा मम्स फ्री है, क्रोन फ्रोक और उसके बाद और चीजों के ऊपर भी फ्रो, वहां पे भी उन्होंने मम्स का कुछ सोचना है। तो ये चीजें अगर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी तो आवाम को सहूलत मिलेगी, तो मेरा ख्याल है हुकूमत कामयाब बन। और जैसे शाह साहब ने बताया ग्रीनलैंड मसला है और चीजें मसले में इंटरनेशनल लेवल पे है, अभी देख लें मुस्लिम कंट्रीज जो है इस वक्त उनके अंदर इतफाक है, और किसी सूरत में भी अब यहाँ पे जैसे शाह साहब ने तफसील बताया कि तमाम एरियाज के अंदर जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी जो है और फॉरन जो है वो काम कर रहे हैं और अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब इस चीज पे सोचना चाहिए कि हमें ये नफरत की सियासत खत्म करनी चाहिए, हमें जो है रवादारी वाली और हमें जो है मिल जुल के अपने मार्ग में रह रहे हैं। 50 आधी सदी से ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा राइट्स है, हमारे हक है, अगर हम ठीक है, हाँ अगर हम हमारे अंदर कुछ चंद लोग कोई अगर ऐसा काम करते हैं क्रिमिनलिटी वाला काम करते हैं तो उनको तो राइट है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बाकी लोग हैं अगर 5% ऐसे हैं तो 95% जो अच्छे तरीके से अपना टैक्स दे रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनके हकूक सल्व न किए जाए, उनके हकूक और उनकी जो चीजें उनको बेहतर किया जाए। हुकूमत की कामयाबी का राज यही होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता चंद चीजें जो है वो शुरू कर दें, ताकि जो लोगों का थोड़ा सा जो होता है ना क्या कहते हैं एतबार वो ठहर जाए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत जो है वो बेहतर काम करेगी।
1: अजान अब क्लोजिंग करते हैं, तो आपने इनकी बातें सुनी, तो आपका जो सोशल डेमोक्रेट के ग्रुप फोर मैन है वो तो गैर मुल्कियों को जानते हैं, तो लेकिन जब गैर मुल्कियों में कोई एक आध कोई अंसर होता है, कोई गलती करता है, तो सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि पूरी सिस्टम को मिलनी चाहिए, पूरे ओवरसीज को मिलनी चाहिए या पूरे डेनमार्क के लोगों को मिलनी चाहिए।
0: नहीं राजा साहब, वही बात मैं आपको कह दूं कि वो यही उस आज का है कि हमने इसीलिए जो स्टेटमेंट्स दिए थे इलेक्शन के अंदर वो यही दिए थे कि हम उनके पीछे जाएंगे जिनने क्राइम किया हुआ है, और जो इस मुल्क का क्या कहते हैं कोई बेनिफिट नहीं करना चाहते, और हम उनके पीछे ही जाएंगे, बाकी हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें उन लोगों की जरूरत है जो दिन रात मेहनत इस मुल्क में करते हैं, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, और ये कमिंग डेज में हो जाएगा। और मैं क्लोजिंग में आपको एक चीज ये बता दूं कि गवर्नमेंट जो बैठी हुई है ना इस वक्त, और जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनके लिए एक व्यूअर्स के लिए और सबके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो सारे काम शुरू करेंगे, मगर उनकी एक मसला उनके लिए ये है कि आज 5 जून हो गया और कमून के और वैक्यूम्स के जो बजट होते हैं वो उनने नेगोशिएशन कर लिए होते हैं और कमून को भेज दिए होते हैं कि वो समर वेकेशन जाने से पहले जो होती है 31, 32, 33, 34 कमूनों की ज्यादातर, कि उसमें वो थोड़ा बहुत काम कर ले, तो इसलिए वो एक मंथ उसमें डिलेट हो चुके हुए हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की फर्स्ट पीरियड है इस वक्त वो ये है कि कमून का और रीजन का बजट वो नेक्स्ट वीक बैठ के कम्यूनस लेंस पेनिंग और रेग्यूंस वो के साथ मिल के बना लें, उसके बाद वो फिर जो होता है फेयर बजट नेक्स्ट ईयर का वो भी जुलाई में तैयार कर लें, तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं जो अपना काम है ना अगस्त में अपना ट्रैक पे शुरू कर देंगे। इसलिए उनकी कुछ क्या कहते हैं चीजें हैं जिसपे वो पीछे हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन दाते दे रहे हैं कि जो उलवेल होती है ना पॉलिटिकल उलवेल जिस तरह होगी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी फैंस उलवेल होगी इकोनमी उलवेल होगी उमस पुलिस ने होगी ये दूसरी पार्टियों ने इस वीकेंड में अपने नाम वगैरह बना देने हैं, वो जब कमेटियां बन जाएंगी तो फिर मिस्टर बैठ के उनके साथ अपने काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत क्या कहते हैं लोगों के लिए ये बड़ा जरूरी है कि सब कुछ जब बन जाएगा तो आस्ता आस्ता कमून के भी काम शुरू हो जाएंगे, मगर फिर होम को जो फेंस मिनिस्टर है जो जस्टिस मिनिस्टर है निकोला वामिंग, ये इनकी फर्स्ट पीरियड यही है कि ये जो कमून के बजट है और रीजन के बजट है ये बन जाए, तो उसके बाद क्योंकि ये डिलेट हो चुके हुए हैं ये नॉर्मली मई में पता चल जाता है मगर जून आ गया तो ये नहीं बने हुए, तो इसलिए इन पे थोड़ा प्रेशर है कि इनके साथ ये बैठ जाए। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है ये मंडे को इनकी मीटिंगें शुरू हो जाएंगी, शायद कल ही वीकेंड में हो जाएंगी हमें नहीं पता, मगर फिर इसके बाद वो अपना काम शुरू कर देंगे तकरीबन आप समझें कि। और दूसरी बात एक और चीज कि पार्लियामेंट जो है ना उसकी वेकेशन होती है तो वो लॉ फैसले जो बनने होते हैं वो बनते हैं 1 जून से लेके 1 अक्टूबर तक, ज्यादातर वो छुट्टियों पे होते हैं, तो जितने लॉ फैसले बनेंगे वो जाके अक्टूबर से बनेंगे जब ये वापस आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये अपनी समय कम करते हैं कि नहीं करते, इसकी हमें कोई इत्तला नहीं, मगर वैसे पार्लियामेंट जो होती है वो 1 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक वोकेशन पे होती है, कोई लॉ फैसले नहीं पास होता, खाली फेंस लॉ के अलावा ना कोई एमरजेंसी चीज हो जाए, तो ये भी बहुत सारी चीजें तब्दीली हैं, ये कमिंग डेज में पता चलेगा कब कैसे सूरत हाल बनती है।
1: शाह साहब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं कि इस हुकूमत ने किया क्या, ये 3-3 महीने छुट्टियां करती है और जो वादे किए हैं शाह साहब ये पूरे करेंगे?
2: बिल्कुल अदनान ने बहुत अच्छी बात की है, ये वादे अभी इसलिए इनको डिफिकल्टी आएगी क्योंकि इनके पास सरमाया नहीं, इन्होंने सरमाया जो है वो बड़े गलत तरीके से कम्यूनों की जो सेविंग थी वो लेके पिछले साल इन्होंने सारी यूक्रेन को दे दी, अपने चीजें दे दी, फिर उसको कवर करने के लिए इन्होंने अपने डिफेंस को कवर करने के लिए इन्होंने पिछले साल बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, और इसलिए इनके पास अभी इनको मुश्किलात आएंगी। आप कम्यूनों का ये असर देख रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है सड़कों के ऊपर, साइडों पे ऊपर घास बड़े हुए हैं, इनके पास पैसा नहीं है। हमारे काउंसलर्स जो हैं हुआ वो डेनिश हो फॉरनर्स हो जो भी हो, ये उनका काम बनता है कि सबसे पहले जैसे डेनमार्क एक नाइस और क्लीन कंट्री होता था, अब ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आप इंग्लैंड में गए हुए हैं और उतरते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ जो है वो गंदगी गंदगी नजर आती है, यही हिसाब अब यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है, और इससे जो है वो हमारे हालात जो है वो खराब है। दूसरी चीज यह है कि जो बच्चों के लिए है इनको सबसे पहले ये चाहिए कि बच्चों के लिए जो बान हेमन है, बस बान हेमनों में बहुत हाई किस्म की, जिनके तीन तीन चार चार बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में जाने की, उनको जो पैसे देने पड़ते हैं पास है पेरेंट्स को, उसको कम करना चाहिए। और ये हर मुल्क कम्यून से कम्यून जो है ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये होना चाहिए कि अगर कोपनहेगन में एक बच्चे के 500 है तो फिर यूलैंड में भी एक बच्चे के 500 होना चाहिए। इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए। दूसरा जो वेलफेयर है, इसके ऊपर मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ये करेंगे कि जैसे मजीब कुरैशी मेरे भाई ने कहा कि थैंडे जो है ये कुछ थोड़ा सा कम कर देंगे, कम्यूने जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगी, लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखें कि बसों का, तो बसें जो है ये कम्यून भी बसों को छूट देती है, बल्कि उनकी मदद करती है, इसी तरीके से रिज्यून भी उनकी मदद करती है। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है जो कम्यूनों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बसें जो है वो चलाने के लिए जो कंपनी है उनकी वाबा है, और उनके उनको चाहिए कि जो वो टिकट लेते हैं या जो उनके अंदर मुसाफिर जाते हैं उनको भी दूसरी कंपनियों की तरह टैक्स देना चाहिए, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स या दूसरी प्राइवेट लिमोसिन वगैरह हैं वो टैक्स देते हैं, इनको भी चाहिए कि ये गवर्नमेंट से पैसा लेने की बजाय, इमदाद लेने की बजाय, ये यहाँ तो अगर गवर्नमेंट से इमदाद लेते हैं तो फिर इनको चाहिए कि पेंशनिस्टों को, जो हैंडीकैप है इनको, और जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं इनको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। जी राजा साहब,
1: चारों से सवाल है, हाँ और ना में जवाब देना है, इसे को अगले हफ्ते डिबेट की तरफ लेकर जाएंगे। मजीब साहब, आप क्या समझते हैं पेंशनिस्टों के लिए बस पास, ट्रेन पास ये सारा फ्री होना चाहिए, एनओकों का इलाज और इसी तरह एनके फ्री होनी चाहिए, इसी तरह जो बाकी दांतों का इलाज जो फ्री होना चाहिए, आप क्या कहें, हाँ और ना में जवाब देना है आपने।
3: जी बिल्कुल होना चाहिए, मैं सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ आधा मिनट लूंगा, बिल्कुल होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आपने गिनवाई हैं ये सारी इनके लिए फ्री होनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन जो है वह हर बंदे को 8 से लेकर 10,000 पाउंड मिलती है, तो उसमें तो गुजारा भी इतना आसान नहीं होता। मैं एक चीज, क्योंकि जो जो नई गवर्नमेंट के लिए जो मसला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये आ रही है खबरों में भी आ रहा है और सुना भी जा रहा है, कि ये हो सकता है टैक्स को ना थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आया ये टैक्स बढ़ाते हैं तो मराहत कहाँ पे है, अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आसानियां कहाँ पे है। तो जो आपने चीजें गिनवाई हैं पेंशनिस्ट के लिए, जो खान साहब ने मुतरब कहा है कि बस के लिए जो किराए वगैरह है, ये जैसे स्टूडेंट है उन सब के लिए ये सहूलतें, उनसे खासकर जो जो बाने फैमिली है जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा इमदाद मिलनी चाहिए। आज आप देखें ना, हम 50-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज आप किसी सुपर मार्केट में जाएं, आपके पास एक 1,000 करोड़ का अगर आपने सौदा ले रहे हैं तो आपका एक तो थैला भी नहीं भरता। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जो चीजें आपने बताई हैं वो पेंशनिस्ट के लिए फ्री होनी चाहिए।
1: जी शाह साहब, फ्री होनी चाहिए, और नाम है
2: ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसके अंदर ये है कि पेंशनिस्टों को जो बोली दी है इन्होंने, वो बोली आप हैरान होंगे कि वो वेस्टाइन और कोपनहेगन में वो बोली जो है वो अनमेनली बोली जो है, अनमेनली बोली सेल्स के जो किराए पे कमरे देते हैं, लाइट देते हैं, उनसे ज्यादा महंगे हैं। तो लिहाजा ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बंदे ने जो पेंशनिस्ट चला जाता है, या खुदा ना करे वो फोर्सेस पेंशन पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके लिए जो किराया है वो जिस तरह 70s और 80s में होता था उस तरीके से उनको हाफ किराया देना चाहिए। अब हैरानगी की बात है कि लोगों की इतनी पेंशन नहीं है जितने के ज्यादा वो अपना पेंशनिस्ट जो है वो दे रहे हैं, हौसला है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे बड़ी गड़बड़ जो है कि दो घर के फर्द जो है वो दिन रात काम करते हैं, जब वो दोनों पेंशन के एज पे पहुंचते हैं तो एक को कम पेंशन मिलती है और दूसरे को ज्यादा पेंशन मिलती है। वो उसका बहाना ये करती है गवर्नमेंट कि देखे जी ये तो हुस्टन इनकम, ये जो सिलसिला है हुस्टन इनकम का ये खत्म करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से लोगों के जो पास बचत है वो ज्यादा होगी अगर दोनों को बराबर का पेंशन मिलेगी तो वो खुशहाल तरीके से रहेंगे। इस वक्त पेंशनर्स और बच्चों वाली फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा दबी हुई है, इकोनॉमिकली उनके ऊपर बहुत बंडल है। जी राजेश साहब।
1: जी अदनान, आखिर में आपसे भी ये सवाल सारे आपके साथ, आपने सुन लिए, सबके जवाब भी सुन लिए, और आखिर में आप क्या कहेंगे?
0: ये ऐसे ही होना चाहिए और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इस पे इंशाल्लाह ताला काम भी किया जाएगा और इसके लिए हल भी निकाले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जैसे कहा गया है कुछ चीजें प्रेशर पे है, पर इंशाल्लाह ताला इस पे अब काम किया जाएगा और इस पे देखा भी जाएगा और कमिंग डेज में जैसे जैसे मतलब मिलेंगी कि फ्रेंड्स भी कैसे है तो व्यूअर्स को बताएंगे।
1: अजान आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। सामने नाजरीन ये थे अदनान अली अमीन, सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब, मुजीबुर्रहमान कुरैशी साहब, इन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना, हमने छोटे छोटे सवाल भी किए, उनकी राय भी ली। सामने नाजरीन आपको भी ध्यान देना चाहिए, हमारा कार किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके जहन में कोई बात है, आप अच्छी कोई चीज़ राय देना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है।
4: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।